0: गर्ने एउटा थाक्ने जहान दिनभरि तिमीले के गरेर बस्थ्यौ हँ? तीन दिन भयो कपडा धुन दिएको, आज पनि त्यसै असरल छन्।
1: मैले काम गरेको तपाईँले कहिले पो देख्नु भएको छ र?
2: के को छलफल हो दाई भाउजू? दुवैजना थकित पनि देखिनुहुन्छ।
1: हेर्नुहोस् न बाबु, हुन त घरका कुरा नभने पनि हुने हो। बिहान उठेदेखि घरको सरसफाई, चिया, नास्ता, खाना, बच्चालाई स्कूल, दाईलाई अफिस, भाँडा भान्सा, करेसा बारीको काम, एक मिनट फुर्सद छैन। तर दाईले मेरो कामै देख्नुहुन्न।
2: हुन त हो, घरका काम कति हुन्छन् कति गणना गरी साध्य छैन। अफिसको एकरो काम भन्दा त घरका काम धेरै गाह्रो छ। आफूले गर्न परे पो थाहा हुन्छ, नगरेकालाई कसरी थाहा होस्।
0: ओहो भाइ, आज तिमीले साँच्चै मेरो आँखा खोलिदियौ। घरमा कम काम हुन्छ म बल्ल बुझे भाइ।
3: एक अर्काको कामको सम्मान गरौं, समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौं।
4: सूचना सूचना सूचना, निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना।
5: नवीन निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना।
4: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नबिल बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नबिल निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
5: मिति 2083 वैशाख 25 गतिदेखि 28 गतेसम्म।
4: स्थान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ।
5: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू:
4: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने,
5: पोलेका कारण हात खुट्टाका औलाहरू टाँसिएको,
4: पोलेर टाउको कपाल गुमेको,
5: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका,
4: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औला भएका वा पैतला भित्र फर्किएका।
5: विशेषता:
4: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
5: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला।
4: विस्तृत जानकारीका लागि 9853500076 अथवा 9840523555।
6: रौनक घर र मन दुवै रंगीन बनाउने आकर्षक अफर आजै बर्जर पेन्ट्सको खरिदमा पाउनुहोस् मोटरसाइकल, फ्रिज र मोबाइल फोन जित्ने मौका। साथै स्योर सर्टमा पाउनुहोस् 100 स्क्वायर फिटको सेल्फ इल्युजन डिजाइन पनि। शर्तहरू लागू हुनेछन्।
7: अब सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवाहरूको लागि सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट।
8: हाम्रा सेवाहरू:
7: आधुनिक भवनको नक्सा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
8: बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि घर जग्गा तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने,
7: विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागि भित्र मूल्याङ्कन गर्ने,
8: घरेलु कार्यालयको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने।
7: सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट, रेडियो लुम्बिनीको भवन मणिग्राम रूपन्देही,
9: शाखा कार्यालय तिलोतमा नगरपालिकाको अगाडि।
10: सम्पर्क 9570024344, 9570035227 र 9570073220।
11: बुटोल भैरहवाको बीच मणिग्राममा स्तरीय क्लिनिक नीता पोली क्लिनिक प्रणाली।
12: हाम्रा सेवाहरू:
11: जनरल फिजिसियन,
12: स्त्री तथा प्रसूति,
11: बाल रोग,
12: छाला तथा यौन रोग,
11: हाड जोड्ने नसा तथा बाथ रोग,
12: टाउको तथा मनोरोग,
11: नाक कान घाँटी,
12: जनरल सर्जरी,
11: भिडियो एक्सरे,
12: डिजिटल एक्सरे,
11: ईसीजी,
12: डेन्टल तथा प्याथोलोजी,
11: फिजियोथेरापी
12: तथा फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध छन्।
13: किशोर किशोरी, युवाहरू र 15-49 वर्षसम्म को महिलाहरूलाई अस्थायी परिवार योजनाको साधन, लामो समयको साधनमा कपर्टी र इम्प्लान्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ।
14: गुणस्तरीय सेवामा विगत लामो समयदेखि प्रतिबद्ध
15: नीता पोलिक्लिनिक प्राली, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही,
16: रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। फोन नम्बर 0175-62-832, मोबाइल
17: 9857-21-835।
18: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ई बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता? अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भाईल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे ना तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
19: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन होई गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टर आइन बहिनी तनी बता दाता।
18: ठीक बा सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
3: घोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा। घोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा।
18: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
19: सब मिल के खियावल जाए।
18: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए। बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भैले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोस हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
19: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जवा बेसी दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे 2 जवा बेसी देवल जाए।
18: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही। खास करके हाथ सफा रख खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही बुझलू ने।
19: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपंदेही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपंदेही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
17: नमस्ते आए नमस्ते होइन बुढेसकाल में के कुरा में हो बुढ़ा बुढ़ी गफी तय
20: के हुनु नर्स नानी जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासु ससुर को मेसो खोज्दै छम क्या
17: आहा यो अनि तरिका सासु ससुरा को हो त पेट में बच्चा बसे देखि 2 वर्ष को हुन्जेल सम्म का यी हजार दिन में आमा र बच्चा लाई पोषण युक्त खाना खुवाउने र सरसफाई का बारे में ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुबई को स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
21: लौ ढुंगो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी।
17: ल यो सुन्नु त रेडियो में फुके को फुके हुन्छ त।
22: माछा मासु अंडा मिठो सबै भन्दा माछा मासु अंडा मिठो सबै भन्दा
23: अनि फलफूल र सागपात बच्चा को खाना साथ साथ
24: सबै मिलाई खुवाऊ।
23: कम्तीमा 2 वर्ष सम्म आमा को दूध पनि नछुटाऊ। बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि 6 महीना पूरा भएपछि आमा को दूध को साथै अंडा माछा मासु हरिया सागपात तथा पहेला जात का फलफूल पनि खुवाए। तपाईले नि
25: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैं खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमालाई 2 पटक थप पुसिलो खाना खुवाऊ।
26: हो यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो नि। आईडी नेपाल बी ग्रुप को साझेदारी में ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार FM द्वारा सचेतना का लागि जारी संदेश।
27: Music Nepal.

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सहकारीमा खाता खोलौं, बचत गर्ने बानी बसालौं। अध्यक्ष डीबी थापा, व्यवस्थापक लक्ष्मण काउचा तथा तुंगा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओम सतिया एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलोत्तमा सुनसादी व्यवसाय संघ तिलोत्तमा एक ड्राइवर टूल रूपन्दे

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुंवर टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार सिलोतमा एक ड्राइवर टोल रूपन्देही।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: इंजीनियर दुजेन्द्र कुमार बस्नेत सनराइज इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्सी परिवार तुलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही रेडियो लुमिनी भएको भवनमा।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविन्द पाण्डे, अध्यक्ष सन्तोष कुमार शेरचन्न तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउतिन

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: स्कूल तथा कैंपस ड्रेस को विश्वसनीय पसल उपहार में नया वर्ष को बहार प्रोपराइटर पारस पौडेल तथा दामोदर पौडेल उपहार साड़ी सेन्टर तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही साथ हामी कहाँ विभिन्न प्रकार का साड़ी कुर्ता सलवार सटिंग सुटिंग स्कूल बोर्डिंग र कैंपस का ड्रेस तथा स्कूल र कलेज का ब्याग सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98470177118।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय, श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय, तिलोत्तमा 14, टिकुलीगढ़, रूपन्देही।

जोखिम टाड़ने भए पारी पारी झाड़ी बुट्यान घास राख्नु हुन्न साँझ पर्दा घर छोड़ी गाउँ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेदनारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष अर्जुन बस्याल तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्यारामाउंट बोर्डिंग हाई स्कूल तिलोत्तमा एक नया मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पामीर इंटरनेशनल एकेडेमी परिवार तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 9857039848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार, चिलोत्तमा साथ भलवारी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौं अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मड़गिराम।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष शकुन्तला सुनारी मगर, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, करैया मंगलापुर परिवार।
1: पितो शान्तिको मुहान लुम्बिनी, शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपराइटर प्रकाश कार्की, साना किसान दुग्ध बिक्री केन्द्र तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक रूपन्दे। साथ ही हामी कहाँ शुद्ध ताजा पनीर, घिउ, दूध, दही, नौनी एवं कुल्फी का विभिन्न आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9872 28 157।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी संघ परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण रिसम में आबद्ध विद्यालय विद्यार्थी पदाधिकारी बुद्धिजीवी एवं संपूर्ण जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष फूल बहादुर सरांगोटी पवन, रूपन्देही एकीकृत विद्यालय संगठन परिवार, रिसम रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक गोकर्ण खड्का आरबी ईटा उद्योग हजुर आरबी ईटा उद्योग द्वारा निर्माण गरिएका नम्बर वन ब्रांड का गुणस्तरीय ईटाहरू सदैव प्रयोग गरौं। सीधा सम्पर्क 9857077873।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेशमा रहनुभएका सबैमा सुख शान्ति समृद्धि एवं देशमा राजनैतिक स्थायित्वको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष रुस्तम कडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहिनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष क्षेमेन्द्र राणा, श्री राम जानकी शिव मंदिर परिवार, तिलोत्तमा 9 कुटी मंगलापुर रूपन्दे।
2: विश्व शांति को मुहान लुम्बिनी, शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति, ल्याब प्रशासन, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लीला पन्त तथा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड केउलानी रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु नमूना बोर्डिंग स्कूल चिलकमा 10 बेमरी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्लम्बर सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप सधैंको भरोसा आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुमिनी बिजनेस प्राली योगीकुटी बुटवल साथै हामी कहाँ प्लम्बर ब्रांड का सीपीबीसी तथा पीबीसी पाइप पाउनु का साथै स्टील टंकी प्लास्टिक टंकी र धारा सेट उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 42583 र 98570 42483।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: चेयरमैन बसन्त रोका छेत्री, माउंट एवरेस्ट कथा मिल्स, माउंट एवरेस्ट एग्रोउड तथा माउंट रोजिंग टॉप एंड टाइम किलोतमा 16 पर्सहवा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हीरालाल खनाल, व्यवस्थापक दिल्लीराज शर्मा, मिलीजुली बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, तिलोत्तमा 8 सूर्यपुरा रूपन्देही।
2: स्वागत गरौँ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ देश विदेश में रहने संपूर्ण नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पांडे मिलीचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त आमा बुबा दाजुभाई एवं दीदी बहनी सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन में सुन र चाँदी का गहना ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। पालपाली सखी सुन चाँदी पसल तिलोत्तमा 5 मणिग्राम बजार प्रोप्राइटर सुरज सविता गहतराज। सम्पर्क नम्बर 0175625914 मोबाइल नम्बर 9847007777 र 9847058627।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष राजेश कुमार कसौदन, महासचिव भूपराज अर्याल तथा पश्चिमांचल ट्यांकर व्यवसायी संघ परिवार, तिलोत्तमा सात, भलबारी, रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन तिलोत्तमा में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व तथा देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक गौतम तथा प्याप्सन तिलोत्तमा परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देही में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्वहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक खनाल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन परिवार रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुसुल 8 सुक्खा नगर रूपन्देही परिवार
2: नया वर्ष को शुभ कामना।
0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम, रेडियो लुम्बिनी को ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 0175268332।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दक्ष अनुभवी र अब्बल शिक्षण सिकाई को अर्को नाम न्यू लाइफ मावि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी परिवार तिलोतमा एक शंकरनगर रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल 98570 34520।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: न्यू इन्भायरमेन्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तुलुतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही मोबाइल 98570 26294।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नवज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98 4 70 26 8

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरू क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: खेल खेलाऊ स्वस्थ बनाऊ
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार तिलोत्तमा 10 नम्बर रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता
0: हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर्स में विवाह व्रतबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने संपूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा संपर्क 071-562-477 र 98-470-59-25।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। प्रोपराइटर कृष्ण रसाईली मनकामना सुन स्वादी पसल चिलोतमा एक ड्राइवर टोल चोक रूपन्देही हामी कहाँ आधुनिक तथा जुनसुकै डिजाइनमा सुन र चाँदी का गहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। साथै विवाह लगायत का जुनसुकै शुभ कार्यमा सुन लगायत का गर गहना का लागि सधैं सम्झिनु होला है मनकामना सुन स्वादी पसल चिलोतमा एक ड्राइवर टोल चोक।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पाण्डे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 98570042306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली, मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा स्वर जुडा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधी विक्रेता आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहनी सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर सुरेश कुमार न्यूपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त इस आमा समूह में आबद्ध महिला दीदी बहनी शुभेच्छुक वडावासी एवं देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपा पांडे तथा कैलाश आमा समूह तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टंडन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल सिलोतमा तेरा मधौलिया रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रिंसिपल डीबी थापा, लिटिल स्टार बोर्डिंग स्कूल परिवार, तिलोत्तमा 16 जुड़ा रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नंबर 98570 26315।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जितू, प्राचार्य किरण सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतना साथ भलवारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570 35824।

बीमा गरौ जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अभिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा एलआईसी नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। बहुदलीय बहुजातीय समाजवाद को संरक्षण गरौं, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता को पूर्ण कार्यान्वयन गरौं। अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङ, राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजु, आचार्य गोपाल प्रसाद आचार्य तथा होराइजन जीबीएस तिलोत्तमा एक ड्राइभर टुल रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्राचार्य दिलबहादुर थापा तथा अध्यक्ष सूरज थापा श्री ज्योति आधारभूत विद्यालय फुलोत्तमा 8 ज्योति नगर 4 नम्बर चोक रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: झरना फार्मेसी तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही हामी कहाँ हरेक खाले बिरामीहरूका लागि निशुल्क परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण चेक जाँच उच्च कोटिका फार्मासिस्ट द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सरसल्लाह निशुल्क बिरामी चेक जाँच र परामर्श सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छन्। साथै हामी कहाँ सबै खाले औषधिहरू उपलब्ध छन्। सबैले जान्नै र बुझ्नै पर्ने नाउँ झरना फार्मेसी आजै जाउँ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98461776।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ ही देश विदेश में रहनु हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष धनेन्द्र पौडेल, झरना स्पोर्ट्स क्लब परिवार, तिलोत्तमा छ कुञ्जलापुर।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर लालमणि भट्टराई, झरना एण्ड तुलसा इंटरप्राइजेज, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, गिरवान स्कूल को ठ्याक्कै अगाडि। साथै हामी कहाँ ग्यास सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री पाउनुका साथै किचनका लागि आवश्यक सबै किराना सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामी कहाँ होम डेलिभरी को पनि व्यवस्था छ है। थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल 98575342 र 98447 15538।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डन मोडल एकेडेमी परिवार 3-5-6 नयामिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ ही देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष बाबुराम देव कोटा ध्रुवतारा युवा क्लब तिलोत्तमा 1, 5 र 9 को संगम प्रेमनगर रूपन्देही समाज सेवा में सदैव अग्रणी ध्रुवतारा युवा क्लब।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्मा तथा धौलागिरी मल्टी स्पेशलिटी डेन्टल क्लिनिक परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्दे साथै विगत 15 वर्षदेखि मणिग्राम क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट सेवा दिन सफल वरिष्ठ डेन्टल सर्जन डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्माद्वारा दाँत मुख र गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ इम्प्लान्ट एवं अर्थोडेन्टिक सेवा पनि उपलब्ध छ।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: महादेव ऑटोमोबाइल्स होंडा कंपनी को अथोराइज सर्विस सेंटर तिलोत्तमा 5 मणिग्राम पर्वु बैंक को छेवै में साथ ही हमी कहाँ होंडा बाइक तथा स्कूटर सर्विस गरिनुका साथै होंडा का जेन्युइन पार्ट्सहरू सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 071-591-159 र 98-472-97-159।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त सेवाग्राही, संचालक समिति, अस्पताल प्रशासन कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संचालक रामकृष्ण पौड्याल, हेल्दी स्माइल डेन्टल केयर परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क 071-562-593। साथै हामी कहाँ वरिष्ठ डेन्टल सर्जनद्वारा दाँतमुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: ज्ञानगंगा पाठशाला परिवार तिलोत्तमा चौर शीतल कुंज रूपन्देही संपर्क नंबर 98573304।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमा नौ केउलानी रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9857707029।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक समीर रिजाल तथा किशन केसी, फेमस आल्मोनियम एण्ड स्टील इंजीनियरिंग ग्लास हाउस परिवार तिलोत्तमा 9 शंकरपुर रूपन्दे। साथ ही हामी कहाँ आल्मोनियम को जाल ढोका, अफिस डेकोरेशन, पार्टेशन, कटन वाल तथा सीसा फन ग्लास एवं स्टील सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।
2: साथै यहाँ यूपीबीसी का झ्यालडोका सम्बन्धी कामहरू पनि गरिन्छ।
1: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98570 1502 र 98570 42708।

0: नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष होमनाथ पराजुली तथा रूपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघ तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहिनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, सचिव झविन्द्र गिरी तथा श्री बासधारी देवी शक्तिपीठ पश्चिम पहुनी।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रकाश थापा तथा देव पाइप इंडस्ट्रीज प्राली तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्थापक प्राचार्य खेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट क्रिम्सन अस्पताल परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूप।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यस क्षेत्रकै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था ब्रिटिश ग्रामर स्कूल रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेय, प्राचार्य डोलराज पाण्डेय तथा विश्व शांति सामुदायिक आधारभूत विद्यालय परिवार तिलोत्तमानौ नन्दनमन रूपन्दे। सम्पर्क नम्बर 98470309634।
2: हामीले खुशी बनाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: भारती मार्बल्स परिवार तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देही साथै हामी कहाँ टायल ग्रेनाइट पाइप फिटिङ बेसिन धारा आइटम एवं कम्बोर्ड लगायत का सामग्री सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 2255।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीनानाथ ढकाल, आनन्दवन मधुबन सहकारी संस्था लिमिटेड, चुलुकमा 12 नम्बर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा समस्त कृषक दाजुभाइ, कुलारा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य, मौजा मुख्तियार, कर्मचारी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दधिराम गौतम, 36 मौजा सामुदायिक सिंचाई परिवार, किलोतमा एक, रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में इस वनवाटिकालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जन कार्यसमिति पूर्व अध्यक्षहरू सल्लाहकार आजीवन तथा साधारण सदस्य र कर्मचारी सबैमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष खिमलाल पाण्डे, शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वनवाटिका शंकरनगर रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष शिवप्रसाद भट्टराई, प्राचार्य दीपक गौतम तथा एपेक्स स्कूल परिवार तिलोत्तमा एक शंकरनगर रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुणस्तरीय बिजुली पानी को सुलभ समाधान प्रोपराइटर दीपेश पांडे एपी ट्रेडिंग।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुणस्तरीय बिजुली पानी को सुलभ समाधान प्रोपराइटर दीपेश पांडे एपी ट्रेडिंग परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक देखि 100 मीटर पूर्व। साथ ही हामी कहाँ बिजुली पानी प्लम्बिंग का उच्च स्तरीय सामान तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 9857042848।
2: बर्जर घर रंग रौनक घर र मन दुवै रंगीन बनाउने आकर्षक अफर आजै बर्जर पेन्ट्स को खरीद में पाउनुहोस्। मोटरसाइकल फ्रिज र मोबाइल फोन जित्ने मौका साथै स्योर शॉट में पाउनुहोस्। 100 स्क्वायर फीट को सेल्फ इलिजन डिजाइन पनि। शर्तहरू लागू हुनेछन्।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: स्कूल तथा कैंपस ड्रेस को विश्वसनीय पसल उपहार में नया वर्ष को बहार प्रोपराइटर पारस पौडेल तथा दामोदर पौडेल उपहार साड़ी सेन्टर तिलोत्तमा पास मणिग्राम रूपन्देही साथ ही हामी कहाँ विभिन्न प्रकार का साड़ी कुर्ता सलवार सटिंग सुटिंग स्कूल बोर्डिंग र कैंपस का ड्रेस तथा स्कूल र कलेज का ब्याग सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि संपर्क 98470077118।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय, श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय, तिलोत्तमा 14, टिकुलीगढ़ रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार, टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, खेलोत्मा एक ड्राइवर टोल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजू भाई तथा दीदी बहिनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सचिव अरविंद पांडे, अध्यक्ष संतोष कुमार शेरचन्द तथा श्री सिद्ध बाबा मंदिर विकास समिति परिवार तीनाउ तीन

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलोत्तमा सुनसादी व्यवसाय संघ तिलोत्तमा एक ड्राइवर टूल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष गोपाल रामदाम, रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी संघ परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण रिसनमा आबद्ध विद्यालय विद्यार्थी पदाधिकारी बुद्धिजीवी एवं सम्पूर्ण जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष फूलबहादुर सराङ्गोटी पवन, रूपन्देही एकीकृत विद्यालय संगठन परिवार, रिसन रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक गोकर्ण खड्का आरबी इटा उद्योग हजुर आरबी इटा उद्योग द्वारा निर्माण गरिएका नम्बर वन ब्रांड का गुणस्तरीय इटाहरू सदैव प्रयोग गरौं। सीधा सम्पर्क 9570 77873।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष रुस्तम कडेल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा, तिलोत्तमा नगर समिति।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर सूरज लोहागुन, श्री कैश आभूषण सुन चाँदी पसल, तिलोत्तमा 5 प्रेम भवन सटर लाइन। हामी कहाँ सुन चाँदी का अत्याधुनिक डिजाइन का 24 क्यारेट का रेडीमेड गरगहना पाउनु का साथै अर्डर अनुसार का गरगहना सुपथ मूल्य में बनाइन्छ। सीधा सम्पर्क 98570 60790।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार, चिलोतमा सात भलवारी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्कृत भाषा हाम्रो पहिचान, धर्म संस्कृति जोगाउन थालौ अभियान। प्राचार्य बालकृष्ण पाठक, अध्यक्ष गोपाल भट्टराई तथा सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष शकुन्तला सुनारी मगर, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, करैया मंगलापुर परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पूर्व राइटर प्रकाश कार्की, साना किसान दुग्ध बिक्री केन्द्र तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक रूपन्दे। साथ ही हामी कहाँ शुद्ध ताजा पनीर, घिउ, दूध, दही, नौनी एवं कुल्फी का विभिन्न आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98672 28 157।
2: सौजी क्यूआर भयो
3: ए बगनुस् त मेसेज आएको छैन घरी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पामेर इन्टरनेशनल एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 2 जानकी नगर रूपन्देही। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98570 59800।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष राजेश कुमार कसौदन, महासचिव भूपराज अर्याल तथा पश्चिमांचल ट्यांकर व्यवसायी संघ परिवार तिलोत्तमा साथ भलबारी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन तिलोत्तमामा आबद्ध सम्पूर्ण शैक्षिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व तथा देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीपक गौतम तथा प्याप्सन तिलोत्तमा परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर जवाहरलाल न्यौपाने, पूजा मेडिकल हल, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, सम्पर्क नम्बर 98570 30500।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेदनारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय चिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष अर्जुन बस्याल तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे
1: विश्वकै पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जब नेपाली जडीबुटी आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुन्छन् अनि हासिल हुन्छन् जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता नेपाली जडीबुटीको चर्चा अनि रोगमाथि हासिल भएको सफलताको
2: सापकी काटेमी ध्यान देवे वाला बात साप के काटल इंसान घबराई सकत है तो उ इंसान के हौसला देवा जाए। साप के काटल इंसान के तुरंत अस्पताल या सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगावा जाए, झाड़ फूक के तरफ न जावा जाए। अपने घर के नजीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है जानकारी रखा जाए, अपने घर के आसपास झाड़ी न रखा जाए और हमेशा वातावरण सफा रखा जाए।
3: अनुरोध है लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
4: सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरौं। सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा सामाजिक मर्यादा र शिष्टाचारको पालना गरौं। यात्रु, चालक र सहचालकले एक आपसमा मर्यादित र शिष्ट व्यवहार गरौं। सार्वजनिक यातायातका साधनमा हानि नोक्सानी नपुर्याउं। सवारी साधनमा भाडा दर देखिने गरी तोकिएको भाडा दर मात्र लिने र दिने गरौं। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको समय तालिका सार्वजनिक गरी त्यसको पालना गरौं। तोकिएको स्थानमा मात्रै यात्रु उकाल्ने र ओराल्ने गरौं। आरक्षित सिटमा सम्बन्धित यात्रुलाई नै प्राथमिकता दियौं। ट्राफिक नियमको पालना गरौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरी, नेपाल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लीला पन्त तथा नारी जागृति महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड केउलानी रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य कमल कोइराला तथा अध्यक्ष कुम बहादुर बयम्बु नमूना बोर्डिंग स्कूल किलोकमा 10 बेमरी रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्याप्सन रूपन्देही में आबद्ध संपूर्ण शैक्षिक संस्था, बौद्धिक वर्ग एवं शैक्षिक व्यक्तित्व में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीपक खनाल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन परिवार रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्राचार्य दिनेश भूषाल एवं प्राध्यापक सुमन भूषाल अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुथुल 8 सुखानगर रूपन्देही परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक रामप्रसाद ढकाल, नेता पोलिक्लिनिक प्राली परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम, रेडियो लुम्बिनी को ठैक्कै अगाड़ी। संपर्क नंबर 0175268332।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दक्ष अनुभवी र अब्बल शिक्षण सिकाईको अर्को नाम न्यू लाइफ मावी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी परिवार तिलोत्तमा एक शंकर नगर रूपन्देही। थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल 98570 34520।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: न्यू इन्भायरमेन्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय तुलुतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही मोबाइल 98570 26294।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: नवज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 98 4 70 26 8

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: खेल खेलाउ स्वस्थ बनाऊ।
2: अध्यक्ष प्रकाश न्यौपाने तथा नवजीवन क्लब परिवार तिलोत्तमा 6 10 नम्बर रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति ल्याब प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेशनल प्याथ ल्याब परिवार बुटवल।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष जितेन्द्र बौडेल जीतू, प्राचार्य केएन सागर गेवाली तथा लिटिल प्याराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार तेलोतना सात भलबारी रूपन्दे। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 3584।

बीमा गरौं जीवन सबल बनाऊ। नव वर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण बीमाकर्ता अभिकर्ता बीमित परिवार तथा संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। दुर्गा प्रसाद पांडे एजेंसी मैनेजर तथा एलआईसी नेपाल परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष लक्ष्मण खनाल, प्राचार्य दीपक खनाल तथा श्री कुंवरवर्ती इंग्लिश स्कूल परिवार तिलोत्तमा 8 रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ ही देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे मिलीचुली क्लब शंकर नगर तिलोत्तमा एक रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य संचालक समिति सलाहकार लेखा समिति कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष लेखनाथ पराजुली मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण सर्जिकल व्यवसायी औषधि विक्रेता आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रोपराइटर सुरेश कुमार न्यौपाने, मेडिकेयर सर्जिकल एण्ड केमिकल, बुटोल छ मैत्री पर।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मणिग्राम जर्नल स्टोर्स मणिग्राम चोक रूपन्देही दैनिक उपभोग्य सामग्री को थोक तथा फुटकर विक्रेता हजुर इस मणिग्राम जर्नल स्टोर्स में विवाह व्रतबन्ध र पार्टी लगायत का शुभ कार्य का लागि आवश्यक पर्ने संपूर्ण घरायसी सामग्री सुपथ मूल्य में उपलब्ध छन्। सीधा संपर्क 071-562-477 र 98-470-59-25।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। कर्पोरेटर कृष्ण रसाईली मनकामना सुनसादी पसल सिलोतमा एक ड्राइवर टोल चोक रूपन्दे हामी कहाँ आधुनिक तथा जुनसुकै डिजाइनमा सुन र चाँदी का गहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ बनाइन्छ। साथै विवाह लगायत का जुनसुकै शुभ कार्यमा सुन लगायत का गर गहना का लागि सधैं सम्झिनु होला है मनकामना सुन स्वादी पसल सिलोतमा एक ड्राइभर टोल चोक।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर कृष्ण प्रसाद पांडे, माछा पुछरे ट्रेडर्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम वडा कार्यालय जाने माछा पुछरे पथ, सम्पर्क नम्बर 9857042306। साथै हामी कहाँ दैनिक उपभोगका सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै सबै खाले खाद्यान्न सामग्री थोक तथा फुटकर मूल्यमा बेचबिखन गरिन्छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बाल शिक्षा में लगानी ल्याउँछ सुन्दर बिहानी अध्यक्ष गोपाल टंडन प्राचार्य विष्णु प्रसाद ढकाल तथा लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूल तिलोत्तमा 13 मधौलिया रूपन्दे हामीले खुशी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ ही देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष धनेन्द्र पौडेल, झरना स्पोर्ट्स क्लब परिवार, तिलोत्तमा छ कुञ्जला।

0: फोन पॉइंट संग सदै रिवॉर्डेड
1: नया बस को सुबह का
2: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजू आचार्य गोपाल प्रसाद आचार्य तथा होराइजन जीबीएस तिलोत्तमा एक ड्राइवर टूल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष धनेन्द्र पौडेल, झरना स्पोर्ट्स क्लब परिवार, तिलोत्तमा छ कुञ्जलापुर।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोपराइटर मनोज सेन्चुरी, जय सन्तोषीमा ज्वेलर्स परिवार, सिलुत्तमा 5 मणिग्राम चौक रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हाम्रो सिंगो पार्टी पंक्ति नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं देश विदेश में रहनु भएका सबैमा सुख शांति समृद्धि एवं देश में राजनैतिक स्थायित्व को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। बहुदलीय बहुजातीय समाजवाद को संरक्षण गरौं, धर्मनिरपेक्षता र संहिता को पूर्ण कार्यान्वयन गरौं। अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङ, राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथै देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष बाबुराम देव कोटा ध्रुवतारा युवा क्लब तिलोत्तमा 1, 5 र 9 को संगम प्रेमनगर रूपन्देही समाज सेवामा सदैव अग्रणी ध्रुवतारा युवा क्लब।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रकाश थापा तथा देव पाइप इंडस्ट्रीज प्राली तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संस्थापक प्राचार्य खेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देह।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: संचालक रामकृष्ण पौड्याल, हेल्दी स्माइल डेन्टल केयर परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम, रेडियो लुम्बिनी को ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क 0175625393। साथै हामी कहाँ वरिष्ठ डेन्टल सर्जन द्वारा दाँत मुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: ज्ञानगंगा पाठशाला परिवार तिलोत्तमा चौर शीतल कुंज रूपन्देही संपर्क नंबर 98573।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमानौ केउलानी रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 9857067029।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपालीजन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुणस्तरीय बिजुली पानी को सुलभ समाधान प्रोपराइटर दीपेश पांडे एपी ट्रेडिंग परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोक देखि 100 मीटर पूर्व। साथ ही हमी कहाँ बिजुली पानी प्लम्बिंग का उच्च स्तरीय सामान तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 9857 42848।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भारती मार्बल्स परिवार तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देही साथै हामी कहाँ टायल ग्रेनाइट पाइप फिटिंग बेसिन धारा आइटम एवं कम्बोर्ड लगायत का सामग्री सर्वसुलभ मूल्य में उपलब्ध छन्। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98575 2255।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष दीनानाथ ढकाल, आनन्दवन मधुबन सहकारी संस्था लिमिटेड, चुलुत्तमा 12 नम्बर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा
1: हाम्रा समस्त कृषक दाजुभाइ, कुलारा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य, मौजा मुख्तियार, कर्मचारी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

0: प्रशासन कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट क्रिम्सन अस्पताल परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूप

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यस क्षेत्रकै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था ब्रिटिश ग्रामर स्कूल रूपन्देही।
2: शांति को आवाज रेडियो लुम्बिनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेय, प्राचार्य डोलराज पाण्डेय तथा विश्व शांति सामुदायिक आधारभूत विद्यालय परिवार तिलोत्तमा 9 नन्दनमन रूपन्देही। सम्पर्क नम्बर 98470 3934।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष हुमनाथ पराजुली तथा रूपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघ तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त वन का पदाधिकारी कर्मचारी संचालक समिति सलाहकार लगायत देश विदेश में रहनुहुने संपूर्ण आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष तारा प्रसाद छन्तेल 52 कोटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चिमटिप रूपान्त।

नववर्ष 2084 को पावन अवसर में हमारा समस्त मंदिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी महानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहिनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, सचिव छविन्द्र गिरी तथा श्री बासघारी देवी शक्तिपीठ तिलोकमा छ पश्चिम पहुनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य शंकर दत्त उपाध्याय श्री टिकुलीगढ़ माध्यमिक विद्यालय चिलोत्तमा 14 टिकुलीगढ़ रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सहकारीमा खाता खोलौं, बचत गर्ने बानी बसालौं। अध्यक्ष डीबी थापा, व्यवस्थापक लक्ष्मण काउचा तथा तुंगा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओम सतिया एक रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष कृष्ण रसाईले तिलुतमा सुनसादी व्यवसाय सङ्घ तिलुतमा एक ड्राइभर टुल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त तिलोत्तमा क्रिकेट विकास समिति में आबद्ध सदस्य महानुभाव खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभाव दर्शक लगायत क्रिकेटलाई माया गर्नुहुने देश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष अर्जुन पराजुली तथा तिलोत्तमा क्रिकेट विकास समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष अर्चित श्रेष्ठ, प्राचार्य वेदनारायण भट्टराई तथा श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष अर्जुन बस्याल तथा पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा 15 कोटी हवा रूपन्दे।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्यारामाउंट बोर्डिंग हाई स्कूल तिलोत्तमा एक नया मिल रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोपराइटर सूरज लोहागुन, श्री कैश आभूषण सुन चाँदी पसल, तिलोकमा 5 प्रेम भवन सटर लाइन। हामी कहाँ सुन चाँदी का अत्याधुनिक डिजाइन का 24 क्यारेट का रेडीमेड गरगहना पाउनु का साथै अर्डर अनुसार का गरगहना सुपथ मूल्य में बनाइन्छ। सीधा सम्पर्क 98570 60790।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेम जीएम, विद्यालय संचालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगर, प्राचार्य लक्ष्मण अर्याल तथा सेन्ट जोसेफ इंग्लिश स्कूल परिवार सिलोतमा साथ भलवारी रूपन्दे।
2: हार्दिक निमन्त्रणा। हाम्रो यस संस्था अनाथ तथा असहाय महिला कल्याण समाज रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रममा आश्रित सुरेन्द्र बानियाले महाभारत कुन्ती पुत्र राधेय पण्डको जीवनी कवितालाई सत्सङ प्रवचन गर्ने कार्यक्रममा सम्पूर्ण आमा समूहहरू, कर्मचारीहरू, संघ संस्थाहरू, सम्पूर्ण धर्मप्रेमी बुवामा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू उपस्थित भएर प्रवचन श्रवण गरी पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
3: मिति 2083 जेठ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म, समय 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म, स्थान आश्रम प्रांगण, अध्यक्ष मैनादेवी भण्डारी।